0: शीश नवाये क्या थिए जरदे कुसुदे जाहे महला पहला।
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सबगल सुमादं मुख झूठ बिभूखं सारं त्रिपाल ते हाल विचारं गल माला तिलकल लाटं दो धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सफो कटने चो करमं कहो नानक नेचो त्यावे मिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रू।

पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे तो साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे इसन हुक्म बनाए सी हुक्म मने होवे प्रमाण तक खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चुंदिया सो फल पाए सी।

नानक अंत ना जपनी ताके परवार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरियां करी चर बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तुसी ही करनी सार।

पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोल जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोल जी वाहे गुरु बोल जे सिखा दा मन नीमा मत उच्चे मत पात दा राखा आप वाहे गुरु।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश समतोज की जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण निजय तिरपावन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कान्हर बूंद बसोर मावल कुसुम संत गणंत न आवै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै तख्त वह तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पाए का रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख

प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो। हर नाख समार पचाया, गुरमुखानो प्रतीत है हर जियो। मनमुख भरम भुलाया,

प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो, हर नाख समार पचाया। गुरमुखानो प्रतीत है हर जियो, मनमुख भरम भुलाया। हर जी एह तेरी वडियाई, भगता की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई। रहा भगता नो जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़ै जाई। केवल राम नाम मन वसेया, नामे ही मुक्त पाई। रिद्ध सिद्ध सब भगता चरणी लागी, गुर कै सहज सुपाई। मन मुखानो प्रतीत न आवी, अंतर लोभ सुआओ। गुरमुख हृदय शब्द ना भेदयो, हर नाम न लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी, मन मुख फीका अलाओ। भगता विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हो तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता। हौ मैं मार मनसा मन है समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत काम करह प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। गुर प्रसाद सदा मन वसेया, सब काज सवारन हारा। ओ ना की रीस करे सो बिगुचै, जिन हर प्रभ है रखवारा। बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मनमुख भौक मोए बिललाई। आव है जाव है ठौर न पाव है, दुख मह दुख समाई। गुरमुख होवै सोय अमृत पीवै, सहज साच समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै, जे अनेक कर्म करै अधकाई। वेद पढ़ै तै बाद बखान है, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, भज छूट है गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर साचे,
ਦਰ ਸੱਚ ਸਚਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ ਦਰ ਸੱਚ ਸਚਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਿਨ ਹਰ

जन्म जन्म की मैल गई। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग जिस मस्तक

0: श्री वाहेगुरु।
1: बड़ी बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग नेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किछ जान ला, सब किछ तेरे वास, तेरा घर भला, तेरे घर आनंद वधाई तुद कर, माण महत्ता तेज अपना आप।

जिसनु कृपा करहे तन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरी आओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जानाए हे, सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तो आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तो कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ पहिले निवासा। पाणी पावक तनहे किया, पंकज मोह पग नहीं चले। हम देखा तह डूबियले, मन एक ना चेत समूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्रापत मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, आवर काज तेरे कित न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखहु शरमा। जाप ताप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखहु शरमा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम हे शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहौ सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चिन चिन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता।

सर्वठार मोहो सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं अन्य आन। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक नाम अन्यों। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जान्यों। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यों दोहरा।

आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविय, अहनस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरन दुख जाय। ओ वे सिफत खस

0: जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दुहदाई।

सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालार सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमें सो कचन कच महला।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर है जल विस्माद पौन विस्माद

पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड़ी है खात पड़ी है जिते बरस बरस पड़ी है जिते मास।

बस ना पहरे अहनस कहरे मोन में गुत्ता क्यों जागे गुरबिन सुता पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे।

0: मन वसाए, नानक नदर करे सो सतगुरु भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए।
1: आस अंधे

मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करें प्यार धर्मी धर्म करें गवावे मंगे मोख दुआ जति सदावे जुगत न जाने छड बहे कर बार सब को पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पथ परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जपे महला पे।

0: जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के
1: पौड़ी
2: तुरकर्म जना को तुत पाया तांत ने कसम ते आया अन्ना जनता के बस किस नाय तुत वेकी जग उपाया एक नानु तुमे ले का पत खोआया गुर कृपा ते जाने जिते

0: पया जा सुखकामना होई। तू करता करना में नाही जाहो करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता अकल कला पर भूल रहया। तू सच्चा साहिब शिष्य वाले हो जिनकी ती सुपार पया। कहो नानक ते किया बातां जो किश करना सुख रहया महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ। नानक तां का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
0: एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास।

सच पायो गुरु शब्द सच नाम संगति वो है। जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान। दर्शन परसे गुरु के सजना परवान। जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान। दर्शन

जिन वेद व्याकरण विचार है, ब्रह्मा गुण उच्चर जिन कुम सब श्रेष्ठ सवार, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो, सतगुर नानक भगत करी इक मन, तन मन तन गोविंद दियो, अंगद अनंत मूरत निज तारी, अघम ज्ञान रस रस्यो हो, गुरु अमरदास।

गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज समायो माता दा गुण रवे जैन चक्कर में कहायो गुण गावे बलराओ सपत पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो दूर बापरू रंगरे गुरु नानक जस गायो कब कालसो जस नानक गुर कट कट सहज समायो कब कालसो जस नानक गुर कट कट सहज समायो गुण गावे रविदास भगत जा देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेन गुण रवे सहजात रंग माने जोग ध्यान गुण ज्ञान बिना प्रभावर न जाने सुखदेव परीक्षित गुण रवे गौतम ऋख सजगायो कब काल सजस नानक गुर नित नव तन दग छायो।

बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावे बले ओ चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल।

0: जाकोमो न्यान तारे फेरत सकल जोग कबहू को कहू पावे आत्म परिगास को वेद बाणी सहत बेरंच जस गावे जाको सेव मुन गह न तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट भेख किए फिर तो उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बधाई दई गोर रामदास को।
1: सतगुर नाम

नाम सो निधान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुर नाम एक लेव मन जपै।

0: जन दर्शन रहने पयो।
1: नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख, सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यों, कल नाम सुर नर बो है नाम परस जिन पायो, सत प्रगटयो रब लोए दर्शन परस है गुरु कै, आठ साठ मजन हो जगत उदारन नाम, सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम, बारंतर पूरी पड़ी हम अब गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाद बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले, सुत दारा से प्रीतन एक उत्तम पंथ।

है अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत।

विगसिया गोर सतगुर दीहा गोर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना भुख सब जावी।